ये हे दिन दुनिया इता ताला कहलत दम वाइता ताला ले बंती वाइता ताला शेर नारी वाइता ताला मोहबात वाइता ताला मोहबात शेर वाइता ताला ले दिए वाइता ताला तेरे गुना वाइता ताला अच्छी नहीं दे।